क्यों सो रहा, क्या तो कम है, ये लिबास नहीं पोशाक है, क्यों सो रहा मरीज में छुआ था मुझे।

सांस भर गई, छाती फूल जाती है। सच बोल रहा हूं, सिर भी दुखता है, चल नाचते हैं। अब ये हालात है, दिल कूद रहा है, सिर चल रहा है।